माता है। महाराज जय जय हो। कुमार कुमार कहाँ हो? टेंबा में गुरु मोहन जाचे काचे ही माता है। वाना चाहे वांग आओ जल चंबेर कोयम जो बाउंड बाका